आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारम। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक पुरख समाणा, एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबान, हर त्यावे हर त्यावे तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी चमकी फासी, जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जिन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता।

हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हां दे मोए बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करे है, सब को वास संगरे है, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याओ, जो बर चहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिखे हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हां दे मुझे उबरे आए, मरण काल का त्रास निवरे आए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करे और अच्छा।

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बावतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव तैन जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाज ने आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रुन को पल मोह बद कियो घट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी ये के की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जाबुद करख करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेठ सब तार आपे अपनी बूझ उचार तुम सब हीते रहत निरालम जानत भेद भेदे रियालम निरंकार निर्वकार निर्लंब आदि नील अनादि असंभ ता का मूड उचारत पेदा चा को पेव न पावत बेदा ताको कृपा हन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हित न पेव आपे अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा के बेद सजा पर तुम संसारा एक रूपे अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज किनी उत पुज खान बहोर रच दिने कहो फूल राजा हो बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाय चंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो बारे सिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुतपाता सकल मलेश करो रणकाता जे आस तुझ तव शरणी परे तनके दुष्ट दुगत है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्याय हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट वरिष्ट ट्रै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहरे हो ताके ताप तन कमो हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके न कोई एक बार चिंत में संभारा काल फांस देता ही उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दुख ते रहा खड़ केत में शरण तिहारी आप हान दे ले उबारी सरब ठौर मोहो सहाय दुष्ट दुख ते लियो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न माने सिमरत शास्त्र भेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब तो ए बखाने दोहरा सगल।

राम कले महला तेजा आनंद एक ओहकार सत गुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मानव जिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दोता गावो हरि केरा मन जने वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तो सुधारो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार यो करे तेरा कार्य सब सवारना। सब ना गल्ला समरात स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदारो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरे सब किश है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारू। साच नामे आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया।

जे को खावे जे को पुंचा तिस का हो धारू ए वस्त तजी न जाई नित नित राखुर तारू। तम संसार चरण लगत रिय सब नानक ब्रह्म पसारू। श्लोक महला पंजवां।

नौ खंड प्रेम परेचर जीवे महादास्त पीसर थीवे अग्न में होम पुराण कनक असव है वरभूम धान नवली कर्म करे बहुवासन जैन मार्ग संयम यल साधन निमख निमकर शीर कटावे तो भी होमे महल न जावे हर के नाम संसार किश नाहे नानक गुरुमुख नाम जग जपत गत पाहे मन कामना तीरथ दे छुटै कर घुमान न मन थे उठै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साध ना करे मन ते कबू न बिखे हटरे जल तो वे बोधे अनीत शुद्ध कहाँ वे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पथ बहुमूच बहुत स्याण जम का पो व्यापै अनक जतन कर तिस न थापे पेख अनेक अगन नहीं बूझै कोट अभव दरगाह नहीं सीझै शूर से नाही हो प्याल मो व्यापे माया जाल और करतू सगली जम डान गोविंद भजन में तिल नहीं मान हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सहज जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरै सा संगे होमे छोरै जे को जन्म मरण ते डरै सा जना की सरणी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सत्संग जाका मिठे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिये सब ते ऊंचा जाका मन हो सगल गिरीना हर हर नाम दिन घर घर चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल से साजना सुख दुख जन समदस्तेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को धन दे रो नाओ न थानो में को नाओ तेरा थाओ न माने को प्रभु तेर मान सगल कटा को देव दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गल में जानो आपे आपन संगा प्रभराते तुमरी उस तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म में से धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मद मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल थान त्यो उत्तम दान नानक जे कट बसे हर नाम श्लोक निर्गुण आर एनया सो प्रभु सदा सुमहाल जिनकी आदेश चीज राख नानक निभि नाल सबरी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साध सुहार सिगारिया गर्भ अग्न में जिने उभारिया बार बस सबसे प्यारे दूर पर जो बन पोषण सुख सूद बिरध पया ऊपर साग सहन मुख प्याओ बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्शले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद धर ऊपर सुख बसे सुत प्रहाद मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पन पाव गयो मुला जे प्रसाद पोके सब रसा सगल समग्री संग साध भसा दीने हस पाव कर नित रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मुड़ अंध व्यापै नानक काल लयो प्रव्यापै आद अंत जो रखन हार तिसे प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नवनिध पावे तासे मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बसारे मुग्ध जान सदा सदा इहो पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साज छोड़ झूठ संग मचै जो शरणा सो अस्थिर कर मान जो होवन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग साज तिस पर हरै चंदन लेपो तारे तोए गर्द प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पदत बिगराल नानक गाल लो प्रभ जात करतूत पशु की मानस जात लोग बेचारा करे दिन रात बाहर पेखंतर मल माया शब्द नाय कई करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोग समान अंतर अगन बार तन स्वा कल पात्र कैसे तरे था जाके अंतर बसे प्रभाव नानक देजन सहज संभाल सुने अंधा कैसे मार्ग पावे कर गले हो ओढ़ निभावे कहाँ बजार तबूझे डोरा निष्कहिए तो समझे पोरा कहाँ विष्ण पद गावे गंग यतन करे तो भी सुरपांग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो दुआ उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा धरै संग सहाय सुहावे न चीज जो

राही दास हो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे अंध खेल माया रंग रसे निर्कर माने मने प्रतीत काल नया में मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह सूर विकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म तू ठाकर तू पै अरदास ज्यो पिंड सब तेरी रास तुम माध पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोहे न जाने तुम रायंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम थे हुए स्वाज्ञाकारी तुमरी गद में तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी। श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कह लाग आन सवाए नानक कहू न सी जई बिन नावे पाते जाए। अष्टपति दस वस्तु लै पाशे पावे एक बस कारण बखोड़ गवावे एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूड़ा को कहा करे जिसटा कर सो ना ही चारा ताको कीजे सद नम सकारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुखता हूँ मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत सा अपनी दे राज खात पीत बरते अन उलास अपनी मान कश बहोर साले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीप आज ही खोवे और उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्ते से आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौकन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पात माया के हेत सर पर होत जान अनेत बिरख की छाया सो रंग लावे वो बिन से वो मन पछतावे ज्योति से सो चालन हार लपट रहे होता है अंध अंधार मटाऊ सो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आव लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सभाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिखराल मिथ्या रस हस्ती वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया फेक हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर कर गुमान अस्तर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हसबर दर्ब को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पात्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन पर बकारा मिथ्या बास लेर बकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम लय मृति जागत की हार जा साच बिना कह हो सुचा मृथा नाम बिना तन अंत मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिनैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोबिन भजन बिन बिरथे सब काम जो किरपन के निरार धाम धन धन तेजन जे कट बस्यो हर नाम नानक ताके बल बल जाम रह अवर कश अवर कमावत मन प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश है आप ना करै आवत जावत जन्म मरै जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उनजन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप अब करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव शन सगल तेरा सब कह जाने आत्म की रह जिस पावे सिलै लड़ लाए थान तनंत हरिया समाये सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जब नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव शबरी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तल लावे तिसको सिमर परमगत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मने अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याइए त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग अवर रवावे जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर तागा जस गावी जय जय प्रसाद तू सब को मान मुक्ता को जस रसन बखान
जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दरगाह महान पावे नानक पासे ती कर जावे जे प्रसारो कंचन देही लिवला भूत राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहे मन सुख पावे हर हर जस कै जे प्रसाद तेरे सगल सिर ठाकै मन सरणी प्रभु ठाकुर प्रभु ठाकै जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचै मन साथ साथ से प्रभु प्रभु उचै जे प्रसाद पै दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करै जे प्रसाद भूखन पैरी जै मन ते सिमरत क्यों वाल सकी जै जे प्रसाद अस्वस्थ असुवारी मन ते पाको कहु ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोहे प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंध बनाई ऊर्त वैसा तिसे ते आई तिसे ते आए जो एक अलख है इहा उहां नानक तेरी रखा जे प्रसाद करे पुन बोधान मन आड़ पैर कर दिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करनात जे प्रसाद बेखे बिस्मात जे प्रसाद भले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहित जे वसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद सबूरन फल है जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सहित समावे ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार सिर्फ को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू दास युवराज जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जब सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगाट प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया मन उत्तम होए सर्वदान प्रभु तेरी मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु नाथ गम गाद पार बम सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता सार जना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उज्जलोत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रकट सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभु नेरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग कुपर जतन साध के महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभु महे समानी साध के संग गोचर मिलै साध के संग सदा पर फुलै साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पूंजा साध संग होय सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कदूं धावै साध संग अस्त मन पावै साध के संग माया ते पैन साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सामीर साधु के संग महापनीर साध संग के सोनी बैर साध के संग न भींगा पैर साध के संग नहीं को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं होता साध के संग सजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध के संग न कबू धावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचर लहे साधु के संग जार सहे साध के संग बसे धन उचै साधु के संग मैल पहुँचै साध के संग जड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पै नाम निदान नानक साधु कै कुरबान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे साधु के संग सो तन पावे जे तन के सब तो बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप फलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गाम नानक साध के संग सबल जनम साध के संग नहीं खजकार दर्शन भेड़ तो होत निहार साध के संग कलोक थारे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यहाँ सहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छे सो ही फल पावे साध के संग न बिरसा जावे पार ब्रह्म सारित बसे नानक साध सुन रस है साध के संग सुनो हर नाम
साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग घर कर डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध के महिमा भेद न जाने, जेता सुन तेता बखयाने, साध की उम्मा ते गुण ते दूर, साध की उम्मा रही भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सरा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लोक, जैसे सूर सर्व को शोक,

मानो हुए प्रकाश, जैसे तारे ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदृश मान, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा, मन अपना है सबसे नीचा।

वैसे भला ब्रह्म ज्ञानी सफल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग ब्रह्म ज्ञानी भसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी ओम बोध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी के सगल मान माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाकर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सबसे इसका करता ब्रह्म ज्ञानी

पेखे भगवान निमुख निमुठाकर नमस्कार नानक अपरस सगल निस्तार सबरी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत नरंजन दर्श परत रूप न पेखे नेत्र सास की ठहर संसंग हेत कर्ण सुन काहू की निंदा सबते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिगे पर रे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जित पई लोग तेरे नानक कोट मदे को ऐसा परस वैष्ण सोच ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म कर दो हुए नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाशे केवल भगत कीर्तन संग राचा मन धन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर हो कृपाल आप धड़े अवरा नाम जपावे नानक वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिन से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सत्संग पापा मलक होवे तिस भगवती मल उत्तम होवे भगवंत टैल करे नितनीत मंत्र अर्पे विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बोध है राम नाम आत्म में शोध है राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उदय जाग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिंह जय मूल सुखम में जाने अस्तूल चौ वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश जीव बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्णा में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सत्संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतार पस प्रेत मूल पाथर को तार है सर्व रोखा औक्त नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत किसे ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखे अतुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम जिस नजरी आया दास संधन भाजन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगा परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर है सगल संग आदम उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म ही तावे जीवन मुक्त सोग कहावे तैसा हरक तैसा उस सोग सदानंद नहीं बेयोग तैसा सुन तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो भरता ऐसा ही जुगत नानको पुरुष कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिस जित कर रखे तय साधन नाओ आपे करण करावन जोग प्रपावे सोई फनोग पसरो आप हो नंतरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार हवार नानक रचना प्रभ रची भावित अनक प्रकार सबरी कई कोट होहे पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी कई कोट भेद के श्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नव धन नाम ते आवै नानक करते का अंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभिघातम निकोर कई कोट पर धर्म को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माए कई कोट पर दिस परमाए जिस जित लाभ होते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिरजति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर फिरखने बजाए कई कोट पवन पानी भेसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सूर निखतर कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सू तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राज तामस साधक कई कोट भेद प्राण सिमरत अर साधक कई कोट की रत्न समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की ए चिर जीवे कई कोट गिरी मेहर सुवर्ण थीवे कई कोट झकन प्रसाद कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाज सब ते नेरे सब हूँ ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीव है मरा
कई कोड़ भोजन नहीं फिरा, कई कोड़ बैठ से ही खाए, कई कोड़ खा ले सक पाए, कई कोड़ किए तनवंत, कई कोड़ माया में चिंत। जय जय भाणा तय तय राख, नानक सब कृपा कह हाथ है, कई कोड़ भय बैरागी, राम नाम संगति निमलागी, कई कोड़ प्रभु को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहनते, कई कोड़ दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभु अविनाश, कई कोड़ मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन ताना, कई कोड़ खाणी अरखंड, कई कोड़ आकाश ब्रह्मांड, कई कोड़ होए अवतार, कई युद्ध कीनो विस्तार, कई बार पसरे हो पसार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोड़ कीने बहुपात, प्रभु ते हुए प्रभु में समात, ताका अंत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभु सोए, कई कोड़ पार ब्रह्म के दास, तेन होवत आत्म प्रगास, कई कोड़ तत् के बेते, सदा निहारे को नेतरे, कई कोड़ नाम रस पीवे, अमन पैसा सद ही जीवे, कई कोड़ नाम गुण गावे, आत्मना सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक ओए परमे

अष्टवरी कर्ण करावन करने जोग जोत सुपावे सोई होग खिन में ताप उतापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजे हुक्म संभावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब मेरिया समाई प्रभ पावै मनो गुस पावै प्रभ पावै तां पाथर त्रावै प्रभ पावै बिन सास ते राखै प्रभ पावै तां हर गुण पाखै प्रभ पावै तां पद उदारे आप करे अपन बिचारे दौसरिया गाय आप स्वामी केले बिकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि और न आवे कहो मनुख ते क्या होए आवे जो दिस पावे सो ही करावे इसके हाथ होए तन सब कुछ ले जो दिस पावे सो ही करे अनजान ते बिघिया में रचे ये जानते अपने आप बचे पर मैं भूला दस सतावे नंग में चार कुंड फिरे आवे कर कृपा अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट खोराज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दिस कछु ना आवे तिस तत्काल दर्शक प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीश ताका ले खाना गणे जगदीश जो पिंड सब तिस की रात कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रगा

कभू पकारि नीच का साजा, कभू अबकी रिथम है आवै, कभू भला भला कहावै, जो प्रभु राखे ते भी रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कभू है पंडित करे बख्यान, कभू मोहन धारी लावे ध्यान, कभू धरती इसनान, कभू से साधक मोह ज्ञान, कभू कीट हस पतंग होए जिया, अनक जौन परम है परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावै, जो प्रभ पावे तवे नचावै, जो दिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कभू साध संगत ये पावे, उस स्थान ते बौर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल में जल आए घटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सर कुरबान। श्लोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अश्वरी जिसके अंतराज अवमान, सो नरक पति हो सोवान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होस्त विष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे भोजोन परमावे, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे, तनवंता हुए कर कर भावे, तिन समान कर संग न जावे, बहु लश्कर लश्कर मनुख ऊपर करे आस, फल पीतरता का हुए बनास, सब थे आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिट अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे अवतारे, श्रम पावे सगले फिर तारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार, अनक जतन कर आत्म निंद्रव, हर दरगाह को कैसे गावे, आपस को जो पला कहावे, तिसे पला ही निकट न आवे, सर्व की रिन जा का मन होए, को नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब बे जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे कोई बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत, जब लग मोह मग्न संगमाए, तब लग धर्म दे से जाए, प्रभु कृपा से बंधन टूट, गुर प्रसाद नानक हो छुट, सहस कटे लाखो उठतावै, तृप्त नयावै, माया पाशे पावै, अनक भोग बिख्या के करै, नहीं तृप्तावै, खाप खाप मरै, बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोर बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, मठभागी किसे प्राप्त होए, कर्ण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, कर्ण करावन करने हार, इसके हाथ का विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जोश की नो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग, बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक, मरे न बिन से आवे न जाए, नानक साधि रिया समाए, आप हृदय से समझे आपे रजिया सबके साथ, आपकी नो अपन विस्तार, सब कुछ उसका वो करने हार। उसते पिन कहो किश होए, थान थन अंतर ये कैसे होए, अपने जल तप करने हार, कौतक करे रंग पार, मन में अपन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किन्ने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मजे किन्ने बिरले चीना, पला पला पला तेरा रूप, असुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कर कर सुनी सरुण बखयानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरन जो जन परै, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टवदी संत के दुख न हार जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटै, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हृदय को रखे न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन कागजों लवै,
संतन के दुखन सर्व जोहन पाए, संत के दुखन तिर जोहन किरमाए, संतन के दुखन तिर नामे जलै, संत के दुखन सब को जलै, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच न जाए, संत दुखी गाथा उग नाए, नानक संत पावे ता वो भी गत पाए। संत का निंदक महात ताई, संत का निंदक हिण टिकन न पाई, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी हार दीन, संत के निंदको सर्व रोग, संत के निंदको सदा विजोग, संत के निंदा दोख में दोख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मेत, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म है मरै, संत की दुख न सुख दे टरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाय। संत का दुखी अद बीच टूटै, संत का दुखी कि काज न पहुँचै, संत के दुखी को उद्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइया, संत का दुखी अंतर दे थोथा, जो साथ बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किस नाहे, अपन बीजा पे ही काय। संत के दुखी को अब न राखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दुखी यूं बिरलाए, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत में दोहेला, संत का दुखी धर्म से रैत, संत का दुखी सदम से अकैत, किरत निंदगा तुर ही पया, नानक ज्योत से पावे सोई थे आ, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तिष्ट है कोय, जैसा पवे तैसा कोई होए, पया करत न मेटे कोय, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस करो दिन रात, तिसे त्या भो साध गिराज, सब कुछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा गोतिया, अपना के लभ करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिनू कृपा करे आपन नाम दे, बड़पा की नानक जन से श्लोक, तजो सियान फसुर जनो, सिमरु हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहुँचाए। अष्टपदी मानो कीटक बिरथी सब जान।

कृष्णानी याद तिसका हुकुम भूत सुख होए तिसका नाम अखंड परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिगन न लागे कोए उस तन मन में कर निंकार कर मन मेरे सत विहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सोए अल्लाह कर लह जियो नैन उपेग ठाकर का रंग सात संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटिए पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगाह नानक उज्जल मथा बड़भागी से जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाय राम नाम जो करे विचार चेतनवंत गणी संसार मन धन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उतकियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तेरे निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तिस नाम बूझै सात संग हर हर जस कैद सर्व रोग त्यो हर जन रैद अनदन कीर्तन केवल विज्ञान कृष्णमय सो ही निर्वाण एक ऊपर जे जन की आसा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भोग नानक से न लागे रोग जिसको हर परम मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किस देह डरे जैसा सा तैसा दिष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोदर सोदर सोदर सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बूझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुख मसोई असूल न कह जन में न किश मरे आपन चलत आप ही करै आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सिष्ट आपे आप सगल में आप अनक जुगत रही थाप उताप अवनाशी नाही किश कांड धारण धार रहे ब्रह्मांड लख पे पुरख प्रताप आप जपाए तो नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिनू कृपा करे बड़ भागै नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभु कह रंग सदा सदा वसे हर संग सह सुभाए होवे सो होए करणे हार पछाणे सोए प्रभु किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिस ते उपजे तिस मैं समाए

जो मंदिर को थामे थमन, जो गुरु का शब्द बने समन, जो पखान नाव चढ़ तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर, जो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विकास, जो महा उदयान में मार्ग पावे, जो साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बांछ हो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरे काहे बिर लाइये, प्रभु लिखे का लिखे आपाइये, दुख सो प्रभु देव अनहार, अवर त्याग तुम से चितार, जो कुछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान, कौन बस आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पासे थी कर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज मान लिहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद के संता संग चाल, अवर त्याग बिखया जंजाल, तन तन कहे सब कोय, मुख उज्जल हर दरगाह सोए, ए व्यापार बिरला व्यापारे, नानक ताके सद बलिहारे, चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साधु ऊपर जाइए कुरबान, साध सेवा बड़ पागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये, अनक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस जाके, उठ गई संतान दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देव देवदार, सर्वदान जाकी दृष्टि माए, प्रभु लिखे का लहना पाए, सब किस तिस का वो करने जोग, तिस भिन दूसर हुआ ना होग, जब जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते उच निर्मल ये करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोचन निर्मल दिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभु चीत, भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय एक होए, सच करनी सचता की रैत, सच हृदय सत मोह कैद, सच हृदय सच आयाकार, सच वरते साचा पसार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच।

वेशो परेशान न सबरी अविनाशी ब्रह्मन में राग मानो की तुम प्रीत आग तिसे परे न ही किस कोए सर्व निरंतर ये कोस होए आपे बिना आपे जाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा दान दयाल भगशांद सा तेरे की चरणी पाओ नानक के मन ए अनराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सो ही होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिस का मंत्र ना जाने होर नंद रूप मंगल सज जाके सर्व थोग सुनिए करता के राज में राज जोग में जोगी तब में तपीसर गृहस्थ में भोगी त्याय त्याय भगतान सुख पाया नानक तिस पुरख का कने अंत न पाया जाकी लीला के मेहत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम ते आवे से ते गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊज

नाना तल करे किन माए, पूरे पूर्ण सब ठाए, नाना विध कर बंध बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नानक हर नाओ, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सिमत वेद पुराण, नाम के धारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे गास पताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरियां सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रदान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख समय समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरु ते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जागे हृदय प्रवेश, सत नृत पूजे जे कोय, नाम जपता की गत होए, आप सत की असल सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट करने हार, और न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक दोष सुभावे सो वर्तिया, विष्णु विषम भई विषमाद, जन बूझिया तिस आया स्वाद, प्रभु के रंग राह जन रहे, गुरु के भजन पदार्थ लय, वे दाते दुख काटन हार, जाके संग तरे संसार, जन का सेवक सो वट भागी, जन के संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, श्लोक आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच, अश्वरी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत पर भगता, सुरत सत सत जा सुनता, बूझन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जनमान्या, करण ग्रम तिन मूल पछाण्या, जागर से विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैथे निरभो होए बसाना, जिस ते उपजति समय समाना, बस मैल है बस गढ़ाई, ताको भिन्न न कहना जाई, बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु धारै, नानक सो सेवक साथ साथ संवारे, अपने जन का परदा टाकै, अपने सेवक की सर पर राखै, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम छपाई, अपने सेवक की आपस राखै, ताकि कदम कोय न लाखै, प्रभु के सेवक को न पहुँचै, प्रभु के सेवक ऊँच दे ऊँचै, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दया दुष्ट प्रगटाया, नेकी कीरी में कल राखै, भस्म करे लश्कर कोट लाखै।

0: जब नानक प्रहला कवे डाणी, बारंबार बार प्रभु जपिए, पी अमृत हे मंत्र तपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके अवरी दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर करा हर नाम का संग, नाम रह जो जंत पताने, मंत्र नाम है नाम समान है।
1: उठ बैठ सूत नाम को नाम जन के सतकाम बोलो जाचे वदन दार प्रज अपने जन की निदार करहे भगत आत्म के चाहे प्रज अपने सो रह है समाय जो हुआ हो वसो जाने प्रभु अपने का हुक्म पहचाने तसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभु से हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की उठ देहे मन तने अपना तिन जन देहे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थो का दाता तिसकी शरण सासु पावे तिसके दर्श पाप मिटावे

ऐसा गौर बटभागी पाई है। सफल दर्शन पे पुनीत पे परसा चरण गत निमृदित पीठ संग राम कुन रफे पाप ब्रह्म की दर्ग कपे सुनकार बचन कर्ण खाने मन संतोखा तुम पतिया ने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण पियंत कीमत नी पाए नानक जिस पावे तिस दई मिलाए जिह पाए कुस्त अनेक सत पुरख पूर्ण बबेक काहु बोर न पहुंचे प्राणी अपने गोचर प्रभ निरपाणी निराहार निरपै सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई अनक भक्त बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरह साध बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रजपने एहो हर सुपावे जन कोई अमृत पीवे अमृत होए सुपुरखा नाई कदे बिना जाके मन प्रगटे गुणतार आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवको दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नान पर मोह दुख तते नासे तब तुम्हारे ठांड परताई अंत पिया दुख न टे पाई जन्म मरण के मिटे देसे साधु के पूर्ण उपदेसे पोचू का निरपो हो बसे सगल प्यार मंति खन से जिसका साधन कृपा तारी सार संग जपना मरारी थत पाई चुके प्रम कपन सुन नानक हर हर जस श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जन सगरी मोहि अपने चरित प्रयापनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदुजा नाही कोई सर्प नरते को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रकाश साध के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक पार नानक बलहारी सरोक साध नचाले बिन भजन बिख्या सगरी शार हर हर नाम कुमापना नानक इहो तन सार अष्टपदे संत जना मिर करो विचार एक सिमर नाम उदार अवर पासा मीत पसारू चरण कमल रिद में उतारू करण

एक आस रखो मन वाहे सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस धन को चार कुण टुटतावै सो तन हर सेवा ते पावै। जिसो कुणत बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत। जिसो बा को करे भली करनी सा सोबा फिर हर की सरणी। अनक्यो पावी रोक न जाए रोक मिटे हर अवखद लाए।

जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा दे पोहर नाम साजना की मांगो धूर पाप न मिल सरदा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गा सा सा प्रभु तुम्हें त्याओ चरण कवन सो लागे प्रीत भक्त करो प्रभु की नित नीत एक कोटि को आधार नानक मांगे ना प्रभु सा प्रभु की दृष्ट मा सुख होए हर सुपावे बिरला कोई जिन चाखिया से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सुख पर परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग परे सरण अन सब त्याग अंतर प्रकाश अन दिन रवडाक पटवा की जपिया प्रभ सोए नानक नवते सुख होए सेवक की मनसा पूरी फई सतगुर ते निमन मत रही जन को प्रभ हो दयार सेवक की नो सदा निहार बंधन काट मुक्तन पिया जनमन दुख भ्रम गया ऐश पुनी सरदा सा पूरी रफ रया सत्संग हजूरी जिसका सातन लिया मलाय नान भक्ति नाम समाय सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने

सतपाई। जय सर्व कला पे परवीन, तब देव का को चीन, जब अपने आप आप उतारे तो सगन अपसगन का विचार है। जय अपने ऊच अपने अपने रात, कौन ठाकुर कौन कहिए तेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गचान हो आप। जय अषाद अषेद अभे समाया, उहां किसे ब्यावत माया,

पाए। सो समदर्शी तथ का बेता, नानक सगल सेठ का जेता। जी जंतर सवता के हाथ, दीन दयाल अनाथ खुनाथ। जिस राखै तिस कोई न मारै, सो मुआ जिस मनो बिसारै। तिस धरि अवर काम को जाय, सब सरेक निरंजन लाय। जी के दुख जाके सभाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण दान बेअंत अपार, नानक दास दा बरहार।

प्राणी छुटाए। जिस प्रभ राखे तिस नाहि दुख, नाम जपत मन होवे सुख। चिंता जाय मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पुंचन हार। सरी उपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेख तो श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफर दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेव पुरवाण, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसै

ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर पिनास हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगा साठ पदे संत संग अंतर प्रवडीठा ना प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माए अनक रंग नाना दिष्टाए

प्रसोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सजा तराया। जन अवन का हे सवाओ जन के संग चित आवे ना।

चित चित वो नरन एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का हे दार उत्तम सलोक साध के बचन अमरिक लाल इरतन सुनत कुमावत होते दार आप तरे लोके नस्तार सफल जीवन सफलता का संग

माथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पय सबरे न अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण होय सेव की सेव आर्जन जाल बिखाते रहते राम नाम सुन सुना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारे नानक निबही खेप हमारे प्रभु की औस्तत करहु संत मीत सावतान एकागर चित सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो दनिदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए परदान पुरख परगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहर न हो पे आपन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत हृद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्ब तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता हे फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने इहो निदान जपे मन कोए सब जुग में ता के गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी

0: एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ समरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निदावे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सुआसां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौकियां झंडे बंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मादा राखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे माण। निताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है गरीब नवाज पातशाह जीओ आप जी दे हजूर संध्या समय नूं मुख रखदिआं सो दर रहिरा साहिब जी दी पावन बाणी दे जाप कीते गए पातशाह जीओ। सजे होए लड़ीवार दीवाना अंदर तर घर दे प्रीतवान भाई सरबजीत सिंह बीबी संदीप कौर परिवार वल्लों बच्ची कुलविंदर कौर दे आनंद कारज की सफलता की याचना करदिआं होइआं परिवार ने धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। श्री सुखमणी साहिब जी दे पाठ आरंभ करवाए सन। आप जी की महान कृपा रहमत हुई है इस वक्त निर्विघनता सहित समाप्ति उपरंत आनंद साहिब छे पौड़िया की अरदास समुची सेवा निभाउंदिआं होइआं बेअंत भुला चुकां दी खिमा अगां तो समत बख्शिश करनी। समूह सेवक परिवार के सिर ते बच्चों के सिर ते मेहरां भरिया हथ रखना दुखां कलेशां दरिद्रां विघनां दे नास सुखां दे प्रकाश चढ़दियां कला बख्शिश करनियां। दोहां परिवारां दी बाणी आवे दोहां परिवारां विच प्रेम प्यार इतफाक सलूक दीआं दातां बख्शिश करनियां पातशाह जीओ। समूह संगत दी कीती होई अरदास बेनती दर ते प्रवान करनी कदम कदम लेखे विच लाउणा। आप जी दीआं बख्शियां दातां दे विचों तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनियां दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना। मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां देसां परदेसां विच विचरदिआं बच्चिआं दे सिर ते मेहरां भरिआ हथ रखणा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना इन्हां समयां नूं मुख रखदिआं सेवकां वल्लों आप जी नूं सुंदर पौशा के भेट कीते गए। आप जी ने अंगीकार कीते हन पवित्र हजूरी अंदर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी कृपा करो। पावन हुक्म दी दात बख्श के समूह संगत नूं निहाल करो। अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी ਸਰਬਾਧੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।

राव रहे या सबने जाई रहाओ। तोर की बाणी आई तेन सगले चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना, तुर के बाणी आए तेन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सतसंगी जनो, वडभागे हाँ जिथे आप जी ने संध्या समय में मुख रखद सोदर रहराज साहब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण किए ने। सेवक परिवार भाई सरबजीत सिंह, बीबी संदीप कौर परिवार वालों बच्ची कुलविंदर कौर के आनंद कारज की सफलता की याचना करते हुए, परिवार वालों श्री सुखमणी साहब जी के पाठ आरंभ करवाए गए सन। अकाल पुरख वाहगुरू जी की अपार बख्शिश हुई है। निर्विघनता सहित समाप्ति उपरंत परिवार की चढ़ती कला की अरदास आप सारिया ने रल मिल के शमूलियत की है। इस मौके पर सतगुरों ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। सतगुरु कृपा कर सेवकों के आरंभे हुए कार्य निर्विघनता सहित संपूर्ण कर चढ़ती कला बख्शिश कर। परिवार वालों आई हुई समूह संगत का तय दिल तो धन्यवाद है, जिन्होंने परिवार के सदे पत्र से पहुँच के परिवार का माण वधाया है। आई हुई समूह संगत वास्ते परिवार वालों गुरु के लंगर तैयार करवाए गए ने। आप संगत ने गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का, सेवा निभा सत्कार योग भाई परमिंदर सिंह जी लुधियाने वाले औतना दे जथे पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। भुलना चुकां दी खिमा, आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु बाणी के बोहित अमृत के दाते दसा पातशाहियां दी जोत साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच शामा वेले दे सज्जे दवाना दियां हाजरियां भर रहे अति सत्कार योग सन्मान योग सतसंगी जनों सतगुरां दी बड़ी अपार बख्शिश रहमत होई है आप सब रब्बी बाणी दे कीर्तन मेरे तो पहला गुरु करके रागी जथे पासों सरवण कर रहे सी तो आओ सात संगत समा है गुरबाणी विचार दा जिन्ने शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो विचारां नूं रंभण तो पहला मनोबिरतियां नूं एकागर करदिआं साहब सतगुरु वालों बख्शी हुई फतेह की सांझ पाईए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर साहब के पावन श्लोकों के विचों दो श्लोकों का पाठ मैं आप जी के नाल सांझा किया है। माड़ा जायो उन्हां दा मूंह मेरे वल कराओ माड़ा जा और जिहड़े सामने खड़े वाहिगुरु। दो श्लोकों का पाठ मैं आप जी दे नाल सांझा कीता है। एक श्लोक गुरु अर्जन साहब महाराज का है महला पंजवां। इहदे विच भी शब्द उन्होंने कबीर ही वरत्या है तो जे आप सीधा इदा पढ़िए भी कबीरा कबीर राम ना चेत्यो तो इदा ही लगेगा भी ये जिहड़ा श्लोक है ये भी कबीर साहब का है पर ऐसा नहीं है। यह श्लोक गुरु अर्जन साहब महाराज का है। जे तुसी गौर करो तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी दे विच भाई मरदाना जी नूं डेडिकेट करदिआं होइआं गुरु नानक साहब का भी एक श्लोक है जिहदा सरलेख है श्लोक मरदाना महला पहला। तो आम कई बार असीं कह दिंदे आ भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच 36 महापुरखां दी बाणी है वह फिर की हुंदा है भी जिहड़े 36वें महापुरख ने वह फिर इस श्लोक का हवाला दे के कहा जाता है भी ये मरदाना जी का श्लोक है पर नहीं ऐसा नहीं है। श्लोक गुरु अर्जन साहब का है भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब के वो साथी ने

तन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरु साहब जी के मुबारक चरणों के सजे हुए साहिबां दे आलमाना दरबार दीआं हाजरियां पर रही जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी माणयोग साध संगत वडभागे हाँ जो गुरु चरणों के जुड़ मिल बैठन का सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। जुड़ मिल बैठे हो आप जी, धन्यवाद गुरु सवारे ढाडी जथे का। आप जी ढाडी वारा गुर इतिहास सरवण करवा रहे सन, जथे का धन्यवाद है। गुरु चरणा दे विच दवान की समाप्ति की अरदास हुई है। बख्शिश स्वरूप पावन मुख वाक हुक्मनामा आप जी ने सरवण किया है, जो सोरठ राग विचों पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज इतना की मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया है। मुबारक शब्द जो हुक्मनामा गुरु साहब जी ने बख्शिश किया है, बख्शा पावन उपदेश साड़ी सब की जिंदगी का साड़े जीवन का आधार बने। गुरु चरणा विच अरदास है और इहदे नाल सजे हुए दवान की संपूर्णता है। सुखासन की सेवा थोड़ी देर रुके ही होगी क्योंकि सहज पाठ साहब चल रहे हैं तो सिंघा ने पाठ करना है, सो इस वास्ते सुखासन थोड़ी देर रुके किया जाएगा। तो कड़ा प्रसाद का वर्तारा हो रहा है, जिन्होंने प्राप्त नहीं किया आप जी प्राप्त कर सकते हो। उपरंत गुरु का लंगर आई हुई सारी संगत वास्ते तैयार है। सब ने आपो अपनी लोड़ मुताबक छक के जाने की कृपालता करनी। तो जुड़ मिल बैठी समुची संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मीत मेल। ऐसी बबरा ऐसी पवरा बासले तरब फूले बन हरे रहाओ। आपे कबला कंते आपो आपे रावे शब तापो आपे बशरू कौ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करणी करणहार आपे गुरम करे विचार। तू कर कर वेख देखे करणहार जोत जी असंख दे आधार। तू सर सागर गुण गय कबीरा तू सर सागर गुण गबीर गुण गहीर। तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल नरिन परम हीर। तू आपे करता करना जोग नेके वराजन सुखी लोग। नान थ्रा परिणाम सवाए बिन गुर बिन हर गुपीतम जन्म थाए। नानक थ्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुरु गुर प्रीतम जन्म बाद। बसंत हंडोल महला पहला कर दो जाए क्यों अंकार। सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर मैलत चार बहाली। चारे दीवे चौ हथ दिए एका बारी। मेहरबान मसूद माधो वैसी सब तुम्हारी। रहाओ कर कर लश्कर पाव तेरा धर्म करे सिखदारी। धरती देख मिले एक बेरा पाव तेरा भंडारी। ना सबूर होए फिर मंगे नारद करे खवारी। लाब अंधेरा बंदी खाना औगण पैर लहारी। पूंजी मार पवे नित मुदगर पाप करे कोठवारी। पावे चंगा पावे मंदा जैसी नर तुम्हारी। आदि पुरु को अल्लो कहिए सिखाई बारी। आदि पुरु को अल्लाह कहिए सिखाई बारी। देवल देवत्या कर लगाए सिकीर चाले। कूजा बांग नवाज मसल्ला नील रूप बनवारी। कर कर मिया सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। जे तू मीर महीपत साहिब कुदरत कौन हमारी। चारे कुंड सलाम करेंगे कर कर से तुम्हारी। तीरथ सिमरत पुन दान किश लाहा मिले दिहाड़ी। तीरथ सिमरत पुन दान किश लाहा मिले दिहाड़ी। नानक नाम मिले वड्याई मेका कड़ी संभाली। बसंत डोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसया खेन पल ते न रहाई। अनक पाजन कर था कहे बारंबार परमाई। मेरे ठाकर बाल कर आन संग मिले तां पूरा पाईए। पज राम नाम ने सां रहाओ। ए मृत कमड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसया। राम नाम गुर उदक चवाया फिर हरिया होया रसवा। फिर हरिया होया रसवा रसिया मैं निरखत निरख शरीर सब खोजया। एक गुरमुख चलत दिखाया राम नाम गुर उदक चवाया फिर हरिया हुआ रसिया। मैं निरखत निरख शरीर सब खोजया। एक गुरमुख चल दिखाया बार खोज मुए सब साक्त। हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल पे हैं जो कृषि विद्रम कर आया। मिले उस दामा पावनी तार सब किश आगे दालद पंज संभाया। राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकरे आप रखाई। जे सब साकत करे बखिली अकर की तेल ना कटाई। जन की उस्तत है राम नामा दास दे सोभा पाई। निंदक साकत खाव ना सके निंदक साकत खाव ना सके तेल अपने का लोके लाई। जन को जन में शोभा पावे गुण में गुण प्रगासा। मेरे ठाकर जन प्रीतम प्यारे जो होवे दासन दासा।

तेरा हुक्म सच्चा, फुरमान सच्चा, तेरा कर्म सच्चा निशान। सच्चे तुदाख लख करोड़, सच्चे सप्तान, सच्चे सब जोर। सची तेरी सिफत, सची साला, सची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह। नानक सच ते आयन सच, जो मर जमे सो कच निकच महला।

सेवक सेवा करम चढ़ाओ, पिने रहन जिना मन चाओ। सिखे सिख्या गुर विचारण दे करम लंघाए पार, कोलू चरखा चके चक थलवारो ले बहुत अनंत। लाटो माधाणियान गा पंखी पौंदया लैन ना सा, सुवै चढ़ पुआए जंत नानक पौंदया गणत ना अंत। बंधन बंद पवाए सोए पया कीर्तन चै सब कोय, नच नच हसै चलै सिरोए, उड़ ना जाई सिदना होए।

होर मत दिसनो गलियो जो पे दुना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजह गवाया गला मुहे मुह पाना खाए जिस तद

विरहौ पंच पहरुआ दर में रहते तिनका नहीं पतियारा। चेत सचेत चित हुए रहो तौले प्रगास उजारा। नौ घर देख जो काम न भूली बसते अनूप न पाई।

सुख कोए न जाने तुमरा ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलना जी सतनाम वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासा हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणियां धर्मे शीस ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्मनी आरिया सिखी केसां सवासां संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची माधा राखा वाहगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारिया गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे माण नितानिया दे तान न्योटिया दी ओट सच्चे पिता अकाल पुरख धन धन साहब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज आप जी का कुटान कुटान शुकराना आप जी ने उद्दम बख्शे पावन हजूरी विच दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच आप जी की अमृतमई बाणी दे कीर्तन गुरु शब्द दियां विचारां ढाडी वारां सिख इतिहास ते गायन करदियां होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शणी अगे तो समत बख्शणी शुद्ध बाणी पढ़न सेवा करन दी समर्था बख्शणी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दाराई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा सभना नूं चढ़दियां कला तंदरुस्तियां बख्शणियां तिल फुल पिटावां सिवावां दर ते प्रवान करनियां करो कृपा सतगुरु जी अपने इलाही फरमान बख्श के करतार्थ करो अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा वाहेगुरु जी का खालसा वाहे

जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकि निर्मल रीत रहाओ। मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर पाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंतै को ना सहाई। मुकत माल कनक लाल हीरा मनोरंजन की माया हा हा करत बिहानी अवदै ता मह संतोख न पाया। हस्त रथ असव पवन तेज धनी भूमन चतुरांगा संग न चालियो इन मह कछुऐ ऊठ सदायो नांगा। हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइयै नानक इहा सुख आगै मुख उजल संग संतन कै पाइयै। हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइयै नानक इहा सोखा गै मुख उजल संग संतन कै पाइयै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु दा वडभागी हो। सतगुरां दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के गुरदेव की अमृतमई बाणी दे नाल आप सांझ बना रहे हो। ढाडी सिंघां ने आप जी नूं गुर इतिहास सिख इतिहास सरवण कराया है। तो हुण इत्थे ही दुपहर दे दवान की समाप्ति है जी। कड़ा प्रसाद की देख प्राप्त करन उपरंत गुरु के लंगर तैयार ने। आप जी ने लोड़ मुताबक छक के जाने। एक बेनती अक्सर की जाती है कि जदों भी असी गुरु घर आने जदों अरदास ते हुक्मनामा होवे ते असी यतन करिया करिए भी खलो कि अरदास नूं सरवण करिए उपरंत हुक्मनामा सरवण करिए फिर कड़ा प्रसाद की देख जिहड़ी है वह प्राप्त करिए। तो एक उपदेश है जिहड़ा सतगुरु का सानू अज हुक्मनामे के रूप के मिलिया है। तो अपना यतन चाहिए कि आप गुरु घर बैठ के उस उपदेश सरवण करिए। दुनिया के कार विहार जरूरी ने पर जे असी समा कढ के गुरद्वारा साहब आने तो 5-7 मिनट नाल कोई फर्क नहीं पैण लगा। तो आप बैठ के सतगुरु के उपदेश सरवण करिए। सो धन्यवाद बोलदियां हुई भुलां की खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।